0: दाई बेड भूख लगता खाजा बाकी नहीं। ए काकी फे आयल बाटी राम राम काकी।
1: राम राम हो नानी मजा बाटो ऐसन ले छाइट भारी हो सकल बाजे आप हली भुआस कर दिए परल है समय में भुआस कर दे से आपन जिम्मेवारी फे वरी ना और जनक बात फे सुननी पड़ना।
2: आ दीदी फे वो बेला आपन कटरा पहना इच्छा रह छुट्टी में भुआस कर देखा मुआ दाई बाबा कर लग गलती जस्ता फिर डोरिया नी चाहू दीदी मई चाहे ये बाल विवाह कर नी चाहू ये बाल विवाह नी करन दीदी।
3: शारीरिक को मानसिक रूप में सक्षम नहीं होकर किशोरावस्था में जो छाइक भुआस कह देना से दाई वो बच्चा दोनों के स्वास्थ्य खतरा में पड़ सकत उ हिंसा के शिकार बन सकत वही है विद्यालय छोड़ पड़ना बाध्यता हुई सकथिस उ रोजगार फिर नहीं पाए वो गरीबी में बाँच बाध्य हुई पड़थिन। नेपाल के कानून अनुसार 20 वर्ष नहीं पुगे भुआस कराई नहीं हुई असिन करैल से 3 वर्ष सम कैद वो 30,000 रूपया सम जरिवाना हुई सकत वो असिन भुआस कानूनी मान्यता
1: टीकापुर नगर पालिका वडा नंबर 3 से देगिलक जनहित में जारी संदेश।
4: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
5: सुन्नुहोस् न यसपालि तीजका लागि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु।
6: हुन्छ नि तर कहाँबाट किन्ने त?
5: अब किन टाढा जानु सिर्जना सुनचाँदी पसलमा जाऊ न त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे।
6: ए हो र गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त?
5: हुन्छ नि आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ अनि विश्वासिलो सेवा पनि।
6: त्यसो भए आजै जाउँला नि।
5: ल अरूलाई पनि भनौँ है।
6: सुनको चमक आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
4: सिर्जना सुन चाँदी पसल तपाईँको रोजाई हाम्रो जिम्मेवारी।
6: सिर्जना सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा सञ्चालक रूपलाल सुनार सम्पर्क नम्बर 98095443893।
7: कस्तो गनाएको इनका सन्तानले टोयलेट गनाएरै मार्ने भए
8: फेरि छिमेकीको गाली पाइने भयो के गर्ने होला घरमा पुरुष पनि छैनन्।
9: ए दिदी पनि कति डराउनु भएको कोही चाहिँदैन फोन गरेपछि तुरन्तै सेवा उपलब्ध गराउने आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई सेवा छँदैछ नि।
7: कता छ त त्यो?
9: जता भए पनि फोन गर्नुहोस् न तुरन्त आइहाल्छ नि।
7: फोन नम्बर कति हो भाइ?
9: आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई सेवाको सम्पर्क नम्बर 97620203000 हो अर्को पनि छ 98 65 69 20 26।
1: तपाईँको पनि टिकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुवा र लम्कीमा सेफ्टी ट्याङ्की गोबर ग्यास र रिङवाला टोयलेट सरसफाई गर्नु परेमा आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई सेवालाई सम्झिनुहोला। सञ्चालक शेरबहादुर थारू सम्पर्क नम्बर 97 620 20 300 र 98 656 92 026।
10: हरितालिका तीज 2083 तथा थारू समुदायकै महान पर्व अटवारीकै सुखद अवसरमा समस्त औडावासी दादु भैया औ दिदी बहिनी हुकनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं सुस्वास्थ्यकै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गरती। जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 के कार्यालय अमौरा कैलाली।
11: हिन्दू महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै दुर्गा ज्वेलर्समा एक नम्बर सुनबाट निर्मित माइली तिलरी छड्के तिलरी रामलीला झुम्का पिजडा झुम्का बाला औठी पेण्डल चन्द्रमा र अर्डर गरे अनुसार सुन चाँदीका गरगहनाहरू बिना रसायनका बनाइनुका साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
4: दुर्गा ज्वेलर्स बलभद्र चोक नमुना इन्टरप्राइजेज नजिकै टिकापुर कैलाली। सञ्चालक देव बहादुर सुनार सम्पर्क नम्बर 98 68 40 16 60।
12: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: समयमै आफ्नो घर परिवारको जन्म मृत्यु विवाह र बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना आफ्नो वाडा कार्यालयमा रहेका पञ्जीका अधिकारी समक्ष दर्ता गरी कानूनी मान्यता प्राप्त गरौं। यसले तपाईँ हामी सबैलाई कानूनी रूपमा काम गर्न वा गराउन सजिलो हुन्छ।
1: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: किजापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। किजापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। किजापुर अस्पताल, टिकापुर, कैलाली।
3: आई हो बड्डो, घर कहिया सिर्जैब? पाछसे सुरु करल मने घर सिजार सेक्ल।
4: अरे का करूरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू। मिलबो मिलबो नि करत का कैना हो का
3: मिस्तरान बर्जन हो कना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्टफे पटानी हुइन कि गोंगुआ बुढो हो ना कबु कहुँ र घुम जाए त थाहा पाए।
5: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
4: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541 43 26।
6: के तपाईलाई थाहा छ
7: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
6: हो र
7: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
6: अनि

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उ मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेल इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417।
4: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायतका सम्पूर्ण नेपालीजनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै एल्विस एल्विरा टेरसमा हरितालिका तीजको उपलक्ष्यमा डिजाइन डिजाइनका साडी सुट कुर्ती पलाजा तथा थानका कपडाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छन्। एकचोटि सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला।
5: एल्विस एल्विरा टेरस सिद्धार्थ चोक गालप सुपरमार्केट अगाडि टीकापुर कैलाली संचालक सुजिता श्रेष्ठ सम्पर्क नम्बर 9811638887।
6: हेलो बहिनी कता हो तिमीलाई थाहा छ कि नै सीजी कम्पनीको वाईवाई जिंक 15 रुपियाँमा एक पेटी रूपान 60 उपहार सहित एक कचौरा पनि पाइन्छ तिमीले कतिमा किन्यौ
5: मैले त एक पेटी चाउचाउ रु 600 किने
6: 600 रुपियाँ किन हाल्नु पर्यो 560 त ब्लक नम्बर 14 रहेको हरिलाल किराना पसलमा रु 15 वाला चाउचाउ पाइन्छ त्यो पनि सीजी कम्पनीको गुणस्तरीय चाउचाउ र त्यस्तै रु 25 को क्लासिक चाउचाउ र 35 को चाउचाउ रु 2500 रुपियाँमा आउँदैछ नि त्यो पनि हरिलाल किराना पसलमै छ फेरि 500-600 रुपियाँ वाईवाईमै किन हाल्ने 460 मामा चाउचाउ हरिलाल किराना पसलमै पाइन्छ त्यो पनि वाईवाई सीजी कम्पनीको र रिचार्ज कार्ड पनि पाइन्छ भुलेर पनि अरू ठाउँमा नजानुहोस् है होलसेल र खुद्राको दरमा बिक्री गरिनुका साथै क्वान्टिटी अनुसार दर मिलाएर बिक्री गरिन्छ आधिकारिक विक्रेता हरिलाल किराना पसल साथै हिन्दू नारीहरूको महान चाड हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ
5: हरिलाल किराना पसल ब्लक नम्बर 14 पार्क रोड टीकापुर कैलाली संचालक प्रदीप बहादुर विष्ट सम्पर्क नम्बर 9848404211

0: बुका पिए रही था, कभी पेंसिल ले रही था, कभी झोले फटा का आज इठा काकना हो बाबा के उस टपाटी गटीलो ठाव से झोला आन लसे तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था
0: कहाँ से लन वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुनी
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फे करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
4: मैं नहीं जाए वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
3: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैल अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
4: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
5: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिंबू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
6: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: छिछी फे चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फे का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटा हो तो
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनौ कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मना सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 और 98 6 56 92 026

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषा खोज खबर में यहां उपकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप साम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। टीकापुर में गणेश उत्सव शुरू, प्रत्येक दिन पूजा आजा सहित तमाम कार्यक्रम करना। जानकी गांवपालिका से संचालन करलक उत्पादन में आधारित अनुदान कार्यक्रम से कृषक मुकरण राहत। कैलाली के स्तरीय होटल रात के 12 बजे सम संचालन कर पैना हो। टीकापुर में जंगली हथिया के आतंक के कारण स्थानीय नागरिक त्रसित। टीकापुर में काली से गणेश उत्सव शुरू हुई बा। गणेश उत्सव एक कार्यक्रम बीच टीकापुर में उद्घाटन कर गेले खो। वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष मोहन लोहार विकास से उत्सव के उद्घाटन करल बाटे। कार्यक्रम के पूर्व संध्या में दोपहर के बाजा गाजा सहित काली टीकापुर बाजार परिक्रमा करके मूर्ति स्थापना कर गेल। टीकापुर सेवा समिति के अध्यक्ष अमित तमत्ता के अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम में टीकापुर नगर पालिका वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष मोहन बिका प्रमुख अतिथि रहल रहे। कार्यक्रम में बोलती प्रमुख अतिथि बिका से टीकापुर में गणेश उत्सव के लम्बा इतिहास रहलको, आगामी दिन में यह कार्यक्रम है व्यवस्थित रूप में संचालन करना आग्रह करती। वाड़ा के ओर से समिति ही 1 लाख रूपया बजट विनियोजन करल जानकारी दिले बाटे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के अध्यक्ष डॉ योगेन्द्र बजगाई से धर्म जोन को ये फे विभेद नहीं करला को, धर्म सकु नागरिक हुकरन सकारात्मक वार्षिकैटी जैलक बटोईटी, हिन्दू धर्म नेपाल के हिमालय के काखमन से शुरू हुईलक बटोईले बाटे। कार्यक्रम में गणेश मूर्ति किन्ना सहयोग करल बाफत के टीकापुर के गोपाल कर्मी और हिमकर्णा कर्मी हे समेत दोसल्ला सहित सम्मान करगिल बाकलसे। कृष्ण जन्माष्टमी में मटका फोर कार्यक्रम के विजेता खेमा भंडारी है अपना हुकरा पुरस्कार स्वरूप पायल साइकिल बाफत के रकम रसुआ के पीड़ित है सहयोग करल बाफत सम्मान करल बाटे। कार्यक्रम में विजेता कार्यक्रम के टीकापुर नगरपालिका के कार्यपालिका सदस्य दीपक निशानी, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ के सदस्य दीर्घा तिरुआ, रानी कर्णाली सामुदायिक वनवा टीकापुर के अध्यक्ष रमेश बिका, नेपाल दलित जनउत्थान समाज के अध्यक्ष भोजराज बिका लगायत से बोल रहे। उत्सव में सांझ के बिहान के समेत आरती संगे पूजा और समेत और सांस्कृतिक कार्यक्रम करना आज से जानकारी दिलवा। उत्सव असोज 9 गते सम चलना बा। कैलाली की टीकापुर नगर पालिका वार्ड नंबर 2 की सीतापुर क्षेत्र में 1 महीना से जंगली हथिया आतंक मचैती बा। लगहक रलक खोटेना भूराखानी सामुदायिक बनवाक से गांव बस्ती में आईना हथिया धान बाली खाके आतंक मचैती बा। हथिया से जंगली हथिया रात के समय में बस्ती तथा खेत बारी में प्रवेश करती रह पाछे स्थानीय बासिंदा त्रसित बनल बाटे। हथिया से समेत किसान हुकरन लगायल धान बाली में समेत क्षति पुगैती आयल बा। लम्बा समय से लेके हथिया के आवत जावत में नई रूप गिले कोर से किसान हुकरा आपन मेहनत से लगायल बाली जोगैना रात भर जागरण बैठे पर्ना अवस्था रलक। सीतापुर के भोज बहादुर चौधरी के कहाय बा जंगली हथिया टीकापुर नगर पालिका वार्ड नंबर 5 के खड़गे स्मृति रंगशाला क्षेत्र में समेत आतंक मचायल बा। स्थानीय हरका विस्तार से जंगली हथिया करीब 1 महीना से लेके नई क्षेत्र में आतंक मचैत आयल बा। खोजखबर में घड़ी विश्राम पाच फिर से सुनती रह सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: आँखा का रोगीहरूलाई अत्यन्त जरूरी सूचना। नेपाल नेत्रज्योति संघ, गेटा आँखा अस्पताल र भजनी नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भजनीमा यही असोज 3 र 4 गते आँखा शिविर सञ्चालन गरी मोतीबिन्दुका बिरामीहरूको शिविरमा नै निशुल्क अपरेशन गरिने र निशुल्क औषधि पनि उपलब्ध गराइने भएकोले आँखाका रोगीहरूले समयमा नै सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध छ। विस्तृत जानकारी का लागि गेटा आँखा अस्पताल सम्पर्क नम्बर 091-575-204 स्वास्थ्य संयोजक कैलाश डंगौरा थारू सम्पर्क नम्बर 98-484-57-875
2: ल यति छिटो आमा बन्न लागेको त अवस्थामा पनि घरमा सकि नसकि सबै काम गर्नुपर्छ कस्तो गाह्रो हुन्छ पनि काम गर्न विदेश जानु भएको छ के गर्ने के नगर्ने केही थाहा छैन म त जान्नु पर्यो जस्तै लाग्छ
3: त्यस्तो राम्रो पढ्ने मेरो साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्यलमा पारि 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ
4: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
5: हिन्दू महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै दुर्गा ज्वेलर्समा 1 नम्बर सुनबाट निर्मित माइली तिलरी छड्के तिलरी रामलीला झुम्का पिजडा झुम्का बाला औठी पेण्डल चन्द्रमा र अर्डर गरे अनुसार सुनचाँदीका गरगहनाहरू बिना रसायनका बनाइनुका साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छ एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला
6: दुर्गा ज्वेलर्स बलभद्र चोक नमुना इन्टरप्राइजेस नजिकै टिकापुर कैलाली सञ्चालक देव बहादुर सुनार सम्पर्क नम्बर 98-68-40-16-60
0: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा जानकी गाउँपालिका कृषिमा उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कलबा उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम मार्फत गहुँ बालीमा अनुदान पाएल पाछु किसान हुक्रा खुशी हुई जानकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 कि फुलराम चौधरी के कहाइबा फुलराम चौधरी जस्तै जानकी 7 मकरी के वीरेन्द्र रोकाया फे हरेक वर्ष गहुँ खेती करते आयल बाटै वहाँ फे पालिका मन से उत्पादनमा आधारित अनुदान पाएल बाटै पालिका से कार्यक्रम के कृषक उपकरण के खेती मसमेत हौसला मिलना के साथे कृषि खेती करला किसान उपकरण अनुदान पायल पाछे राहत हुई बटुले बाट नहीं जानकी गांव पालिका वार्ड नंबर 8 बगरैया के खुशीराम चौधरी पे हरेक वर्ष गहूं खेती करती बाट नहीं उत्पादन में आधारित अनुदान कार्यक्रम मार्फत पालिका से पहल वर्ष 29,000 नगद प्राप्त कर रहे वहां पालिका से कृषक उपकरण सहयोग करना कार्यक्रम संचालन करना मजा रहल बटोले बाटे जानकी 8 के श्याम प्रसाद चौधरी फे पालिका से ऐसी खाल के कार्यक्रम होना मजा हुई बटोले बाटे जानकी गांव पालिका आर्थिक वर्ष 2079-80 से उत्पादन में आधारित अनुदान कार्यक्रम करते आयल बा पालिका पहिल दुई वर्ष प्रदेश सरकार के प्रतिफलमा समेत आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि 2077 अनुसार कृषक उपकरण अनुदान प्रदान करल रह कलसे पाछक 2 वर्षमा पालिका से आपने कार्यविधि निर्माण करके प्रतिफलमा आधारित कार्यक्रम संचालन करलक कार्यविधि 2081 अनुसार कृषक उपकरण के वर्गीकरण के आधार में कृषक उपकरण उत्पादन में आधारित अनुदान कार्यक्रम करलक जानकी गांव पालिका के कृषि शाखा प्रमुख लालवीर चौधरी कहलबाटे जानकी गाउँपालिकामा उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत आवश्यक किसान हुकरण 49,05,885 रूपियाँ अनुदान दैसेकल बा कलसे गाउँपालिका कृषिमा आत्मनिर्भर बनाइनकला कृषक हुकरण कृषि काममा प्रोत्साहन गर्न मेयरके कार्यक्रम हे निरन्तरता दिन आवश्यक रहबा हाल देशभर मनसूनी वायु के प्रभाव बा हाल मनसून की न्यूनचापीय रेखा सरदार स्थान के दक्षिण ओर रलक बताया गया बा अब कोसी प्रदेश लगायत के बाकी प्रदेश के पहाड़ी और हिमाली भूभाग में साधारणतया मौसम बदलल तथा तराई भूभाग में आंशिक से लेकर साधारणतया मौसम बदलल बा कोसी बागमती और लुम्बिनी प्रदेश के ढेर तथा गंडकी कर्णाली और सुदूर पश्चिम प्रदेश के एक दो स्थान में हल्का से लैके मध्यम वर्षा हुई बा आज दोपहर के रेसभार साधारणतया मौसम बदलन बा। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र स्वाके भोटेकोशी लदियामा आयल बाढ़ पासे कि पुनस्थापना केला स्रोतमा कौन फे कमी हुई नै देना प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नबाट प्रभावित क्षेत्रके जनप्रतिनिधि हुकन सगे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा छलफल गर्ती वहाँ पुनस्थापना केलक सरकार से अपना हुकनसँग हुइलक तथा दात्री निकाय हुकनसँग उपलब्ध कैलक स्रोत साधन प्रयोग गर्न तयारी गर्ती रहल बटुवा गेल बा। वहाँ बाढ़ प्रभावित स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि हुकन संगे फे समेत छलफल हुईल बटोल बाट मनोबल उच्च धरना सहयोगी होना विश्वास फे व्यक्त कर गिल बा। छलफल के क्रम में प्रधानमंत्री साहसे प्रभावित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हुकन से नई विपद के बेला में संघ प्रदेश और स्थानीय तह बीच में तत्काल समन्वय हुईल बाढ़ समेत सुन्ना पाके खुशी लागल बटोले बाट प्रधानमंत्री शाह सरकार प्रभावित क्षेत्रमा जत्रा सेग्ना हाली सड़क सञ्जाल पुनस्थापना करके निरन्तर काम गर्न उल्लेख गर्नबाटै वहाँ सड़क सञ्जाल सञ्चालन आयलसँगे प्रभावित पूर्ववत अवस्थाके ओर्से समेत स्फूर्त समेत लौट्न सहज हुन विश्वास व्यक्त गर्नबाटै। खोज खबरमा एक गरी फेन्से विश्राम विश्राम पाछ फेर सैबी सुन्तिर बी सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
1: टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
7: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन

0: परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
1: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोसरो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाँत, खुजली, हुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
2: हरितालिका तेज 2083 तथा थारू समुदाय के महान पर्व अटवारी के सुखद अवसर में समस्त अवडावासी दादू भैया और दीदी भैया हुकन में सुख शांति समृद्धि एवं सुस्वास्थ्य के हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती। जानकी गांवपालिका वडा नंबर 5 के कार्यालय अमौरा कैलाली।
1: विश्राम पाछ फेर से स्वागत बा। कैलालीमा प्रदेश सरकार के मापदंड अनुसार दर्त हुईलाक स्तरीय होटल अपराध के 12 बजे सम संचालन कर पैना हुई बाट ये आगे होटल तथा व्यवसाय रात के 10 बजे भीतर बंद करे पर्ना व्यवस्था रहलकमा होटल व्यवसाय संघ कैलाली जिला प्रशासन कार्यालय हो जिला प्रहरी कार्यालय बीच हुईलक छलफल पाछ स्तरीय होटल के लग संचालन समय 2 घंटा थप करना सहमति हुई के हो। लाओ व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकार से उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय स्तरीय होटल के रूप में दर्ता हुई होटल रात के 12 बजे सम ग्राहक उकरण सेवा देना पैना कहलवा। होटल व्यवसाय संघ कैलाली के अनुसार जिला में ऐसी होटल की संख्या करीब 100 रहल बता गिलवा। समझौता पत्र में प्रमुख जिला अधिकारी हीरालाल रेग्मी, जिला प्रहरी कार्यालय कैलाली के प्रमुख नरेन्द्र चन्द हो, होटल व्यवसाय संघ कैलाली के अध्यक्ष केशव पाण्डे हस्ताक्षर करल बाटें। सड़क डिवीजन कार्यालय बैतड़ी से टोकल म्याट भीतर काम सम्पन्न नै करना 10 थो निर्माण कम्पनी संगे ठेक्का सम्झौता रद्द करल बा। कार्यालय के सूचना जारी करती महाकाली मध्य पहाड़ी तथा खोटपे चैनपुर लगायत के राजमार्ग अंतर्गत के सड़क निर्माण के स्तर उन्नति ओ मरमर संबंधी ठेक्का रद्द करल डिवीजन प्रमुख किरण सुवेदी जानकारी देले बाटें। सार्वजनिक खरीद एन 2063 के दफा 59 के 7 तथा ठेक्का समझौता मरलक सामान्य शर्त बमोजिम समझौता अंत्य करल डिवीजन कार्यालय से जनायल बा। यह समाचार संगे खोज खबर वायल जैना से पहले खबर के मुख्य शीर्षक फिर से टीकापुर में गणेश उत्सव शुरू प्रत्येक दिन पूजा आजा सहित तमाम कार्यक्रम करना जानकी गांव पालिका से संचालन काल उत्पादन में आधारित अनुदान कार्यक्रम से कृषक हुकरण राहत कैलाली के स्तरीय होटल रात के 12 बजे सम संचालन कर पैनाओ टीकापुर में जंगली हथिया के आतंक के कारण स्थानीय नागरिक त्रसित लिटा बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान्ह खबर सुन सकबी। अब के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनते रह राम राम।
0: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टीकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टीकापुरमा
3: असोज 3 गते पहिलो शनिबारका दिन आउने भएकाले
0: समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टीकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा, सोब्रियासिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोग समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौँ नजम्ने, तालुको रौँ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, डन्डी

0: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायतका सम्पूर्ण नेपालीजनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सामुहिल ज्वेलर्समा सुनबाट निर्मित विभिन्न डिजाइनका गरगहनाहरू बनाइन्छ। जस्तै रानीहार, हार, छटके तिलहरी, माइले तिलहरी, नौगेरी, मगल सूत्र, बाला, औठी, चापखी, झुम्का अर्डर गरे अनुसार खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। सामुएल ज्वेलर्स, बलबर्दा चोक, टिकापुर, कैलाली। संचालक सामुएल सुनार।
1: आई हो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछ से शुरू करल मने घर सिजार सेक्ल।
2: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परे सान हो गिल बाटू। मिलबो मिलबो नी करत का कहीं ना हो का
1: मिस्तरान बर्जन का ना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बने लाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई ई गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
3: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
2: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848 5143 26।
4: सूचना सूचना सूचना यही भाद्र 29 गते देखि असोज 8 गते सम्म गणेश उत्सव 2083 हुने भएकोले सम्पूर्ण टीकापुर वासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। कार्यक्रम हुने स्थान सामुदायिक एफएम चोक टीकापुर एक कैलाली आयोजक टीकापुर सेवा समिति टीकापुर।
5: ८० प्रतिशत रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
6: थोपा थोपामा शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
7: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
5: डेलिभरीका लागि
7: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
5: टीकापुर कैलाली
2: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9807 10672।
8: स्वास्थ्यका लागि पानी

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाए वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई लो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाये
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुंजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417।
4: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायतका सम्पूर्ण नेपालीजनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सामुहिक ज्वेलर्समा सुनबाट निर्मित विभिन्न डिजाइनका गरगहनाहरू बनाइन्छ जस्तै कानीहार हार छटके तिलहरी माइले तिलहरी नौगेरी मोगल सूत्र बाला औठी चाप्ती झुम्का अर्डर गरे अनुसार खरिद बिक्री पनि गरिन्छ सामुएल ज्वेलर्स बलबर्द चोक टीकापुर कैलाली संचालक सामुएल सुनार
5: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी सँग सहकार्य गरौं
1: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि
6: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो
1: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त
6: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला
7: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला सम्पर्क नम्बर 9854899213 इमेल ocmcticapur@gmail.com
8: यही भाद्र 29 गतेदेखि असोज 8 गतेसम्म गणेश उत्सव 2083 हुने भएकोले सम्पूर्ण टीकापुरवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ कार्यक्रम हुने स्थान सामुदायिक एफएम चोक टीकापुर एक कैलाली आयोजक टीकापुर सेवा समिति टीकापुर

हरितालिका तेज 2083 तथा थारू समुदायकै महान पर्व अटवारीकै सुखद अवसरमा समस्त औडावासी दादु भैया ओ दिदी बहिनी हुकनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं सुस्वास्थ्यकै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गरती। जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 के कार्यालय अमौरा कैलाली।

0: फिर चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटरा हो तो
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनों कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मना सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 26 20 300 और 98 656 92 026

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके सांझेक 5 बजे थारू भाषा खोज खबर में अपनौकन स्वागत वा खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम अपनौकरा अब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मफे सुन्ती रहल बाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से रामारोशन विकास केन्द्र आपन प्रथम साधारण सभा के अवसर में असोज 1 गते टीकापुर में घाँसे मेला आयोजना करती भोटेकोशी बाढ़ी पाछ सुदूरपश्चिम के 71 जना संपर्क में अल 141 आमहीन संपर्क विहीन टीकापुर नगरपालिका मन बाल बालिका लक्षित बजेट के समीक्षा ओ हिंसा पीड़ित महिला तथा बाल बालिका के लागि कैलाली में सुरक्षित आवास स्थापना क्रम में जानकी गांवपालिका ज्येष्ठ नागरिक सजिलो तरीका से सेवा प्रवाह करकलाग प्रत्येक ओडा के टोल बस्ती में नजाक सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण करलबा पालिका गांव टोल में नजाक सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण करबेर ज्येष्ठ नागरिक हुकन हन सजिलो हुई बाटेन कैलाली के जानकी गांवपालिका के ज्येष्ठ नागरिक हन टोल में नजाक सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण कैगिलबा गांवपालिका आपन टोल मन आग सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण करल पाछ ज्येष्ठ नागरिक फे खुशी भिलबाट विगत के वर्ष में ओडा कार्यालय में जाकन लाइन में कुर्क भत्ता नवीकरण करना के झंझेट हटल पाछ नागरिक खुशी हुईला फिट टोल मन जाक सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण करबेर आपन हुकन सहजिलो हुईलक जानकी गांवपालिका आटके लाहानी चौधरी बटुलबाट लाहानी चौधरी जस्त जानकी तीन सुवर्णपुरके पार्वती भण्डारी फे विगत के वर्ष मन ओडा कार्यालयमा नवीकरण कराइबेर लाइन बैठपना बाध्यता रहलसे फे यही वर्ष आपन गाउँमा नवीकरण कराइबेर लाइन बैठनी पलक समय के बचत हुइलक बटुइलबाट जानकी गाउँपालिका आठ भगरेयाके धना जैसी फे गाउँ टोल मन नवीकरण कराइपैना मजा हुइलक बटुइलबाट जानकी तीन सुवर्णपुर के विजयनाथ भण्डारी फे गांव मन नवीकरण कराई पाइल पाछ दूर जाइनी पर्लक सजिलो हुईलक बटुइलबाट जानकी गांवपालिका पालिका से प्रदान करना सेवा प्रवाह सरल सहज तरीका से सेवा प्रवाहकलाग नागरिक के अवस्था व आवश्यकता अनुसार सेवा प्रदान करना जरूरी रहलक देख जाइट रामारोशन विकास केन्द्र टीकापुर आपन प्रथम साधारण सभा के अवसर में टीकापुर में घाँसे मेला कार्यक्रम आयोजना करना हुईलबा विकास केन्द्र मंगलवार आज पत्रकार सम्मेलन करती साधारण सभा के उद्घाटन सहित असोज 1 गते टीकापुर में घाँसे मेला के आयोजना करना जानकारी दिलबा रामारोशन विकास केन्द्र के अध्यक्ष दिनेश कुमार शाह रामारोशन विकास केन्द्र के संस्कृति संरक्षण करना उद्देश्य फिर रहलक मोर्चे असोज 1 गते साधारण सभा के उद्घाटन सहित मेला के आयोजना करना जानकारी दिलबाट टीकापुर के खुला मंच में आयोजना हुईना घाँसे मेला तथा साधारण सभा के उद्घाटन कार्यक्रम सुदूरपश्चिम प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री कमल शाह के प्रमुख आतिथ्य में हुईना हुईला कोर से ऊ कार्यक्रम में सहभागिता के लागि सकुहन र अनुरोध समेत कलबाट साधारण सभा के उद्घाटन पाछ दिनभर घाँसे मेला के आयोजना करजिना उही मन न्याउल्या भुआ पञ्चे बाजा प्रदर्शन लगायत के कार्यक्रम धैगी लक्षे अध्यक्ष शाह जानकारी दिलबाट घाँसे मेला व साधारण सभा के सक्कु तैयारी पूरा हुईलक अध्यक्ष शाह बटुलबाट रामारोशन विकास केन्द्र टीकापुर कार्यक्रम स्थल खुला मंच में मंगलवार सरसफाई फे करलबा टीकापुर नगरपालिका मन बाल बालिका के क्षेत्र में हुईलक खर्च के समीक्षा कैगिलबा मंगलवार हुईलक समीक्षा बैठक में शिक्षा युवा खेलकूद शाखा के प्रमुख नरेश अवस्थी आर्थिक वर्ष 2080-81 में 27 करोड़ 36 लाख रूपया 81-82 मन 30 करोड़ 24 लाख रूपया खर्च हुईलक जानकारी दिलबाट योजना शाखा के वरिष्ठ इंजीनियर राजेन्द्र रावल 2080-81 मन 40 लाख 2081-82 मन 3 करोड़ 40 लाख 82-83 मन 3 करोड़ 87 लाख रूपियाँ बजेट बाल बालिका क्षेत्रमा खर्च हुइलक बटुइलबाट जनस्वास्थ्य अधिकृत कमल बहादुर रावल स्वास्थ्य शाखा से आर्थिक वर्ष 2081-82 मन 12,95,000 82-83 मन 44,52,000 रूपियाँ बाल बालिका के लागि खर्च हुइलक बटुइलबाट महिला तथा बाल बालिका शाखा से 2080-81 मन 18,81,82 मन 9,50,000 82-83 मा 4 लाख खर्च हुइलक जानकारी देलबाट पंजीकरण शाखा के अपरेटर रमा चौधरी एक वर्ष के अवधिमा नगरपालिका भरके 721 दलित बाल बालिका के लागि 48,91,000 रूपियाँ पोषण भत्ता वितरण करगिलक जानकारी देलबाट समीक्षा कार्यक्रममा बोल्ती सामाजिक विकास समिति के संयोजक तथा वडा नम्बर 4 के वडा अध्यक्ष लालवीर चौधरी टिकापुर नगरपालिका के केन्द्र वडा सेफे बाल बालिका के क्षेत्रमा लगानी हुई तिरलक बटुलबाट निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेश अवस्थी पालिका से बाल बालिका के क्षेत्रमा लगानी बहती गैलको प्रतिफल फे आई लगलग बटुलबाट कार्यवाहक नगर प्रमुख रामबहादुर नगरजी विनियोजित बजेट से बाल बालिका के समृद्धि सुरक्षा व भविष्य उज्जवल हुन अपेक्षा कलबाट टिकापुर नगरपालिका मन बाल संरक्षण नीति बनाई व यी से आगबन लकारी विधि परिमार्जन कर आवश्यक रहलक औल्या गिल्बा। भोटेकोशी बाढ़ी के कारण सुदूरपश्चिम के हेरैलक मध्य 71 जन सम्पर्क मनाइलबाट प्रदेश तत्काल कार्य संचालन केन्द्र के अभिलेख अनुसार हालसम्म रसुवा नुवाकोट धादिङ गोर्खा चितवन व तनहुँ कार्यरत सुदूरपश्चिम के 141 जन सम्पर्क विहीनबाट कलशे एक जहन के ज्यान गेलबा। गैलक भदौ के बाढ़ी पाछा सुदूरपश्चिम के विभिन्न जिल्ला के घर ठेगाना हुइलक तर प्रभावित क्षेत्रमा कार्यरत मने बाढ़ी पाछा सम्पर्क विहीन हुइलक बटुटी केन्द्रमा गुनासो गैल रह पाछ 71 जन सम्पर्क मैलक जानकारी प्राप्त हुलक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय के विपद शाखा प्रमुख जनक धामी जानकारी देलबाट हालसम्म सम्पर्कमा अहिलक मध्ये 11 महिला 60 पुरूष हो सम्पर्क विहीन हुइलकमा 13 महिला 130 पुरूष रहलक उहाँ जानकारी देलबाट जिल्लाकट विवरण अनुसार कैलालीके 67 जन सम्पर्क विहीनबाट कलशे 53 जन सम्पर्कमा आइलबाट सम्पर्क विहीन व सम्पर्कमा आइल मध्ये कर्मश कञ्चनपुरके 26 ओ 11 डडेलडुरा के 17 ओ 6 डोटी के 2 ओ 1 जनाबाट वस्तक बाजुरा के 16 जना बैटडी के 7 दार्चुला के 4 बझाङ के 2 अछाम के 2 जना आमिन सम्पर्क विहीनबाट बैटडी के 1 जना के ज्यान गैलको सब बुझको अन्त्येष्टि कर्सेकलक आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्र के अभिलेख मन उल्लेखबा। बाढ़ी पाछा सम्पर्क विहीन हुइलक मनिन के परिवार तथा आफन्त आपतकालीन केन्द्र मन गुनासो दर्ता करैल रह सम्पर्क विहीन हुकन के अवस्था एकिनकर उद्धार तथा खोजी कार्य प्रभावकारी बनाए आफन्त हुक्रा केन्द्र मार्फत आग्रह गर्दीबाट खोज खबरमा एक घरिक विश्राम विश्राम पाछैनीबाटी सुन्तिरही सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ।
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
1: के छ त विकल्प?
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं। पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौ।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
2: अहँ हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ।
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली। आज भोलि दिनहुँ जसो सड़क दुर्घटनाका घटनाहरू बढ़िरहेका हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बाटोमा हिँड्दा बाटोको एक छेउ भएर हिँड्ने बाटो काट्दा अगाडि र पछाडि हेर्नुका साथै इसारा गरेर मात्र बाटो काट्ने साइकल होस् या गाड़ी चलाउँदा न्यूनतम गतिमा हाँक्ने गरौं। कतिपय दुर्घटना आफ्नो नभई अरूको लापरवाहीका कारण पनि घट्ने हुनाले बाटोमा हिँड्दा सजग भएर मात्र हिँड्ने गरौं। साथै आफ्ना नानी बाबुहरू तथा घरपालुवा जनावरलाई बाटोमा छाड नछोडौं र आकस्मिक हुने यस्ता दुर्घटनाबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ।
3: जानकी गाउँपालिका एक नम्बर वाडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टिकापुरमा।
5: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
4: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
5: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
4: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
5: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
4: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
5: ईसीजी सेवा,
4: डिजिटल एक्सरे सेवा
5: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
4: फोन नम्बर 98484 27359 र 98842 73 59। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै।
6: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
7: सुन्नुहोस् न, यसपालि तीजका लागि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु।
8: हुन्छ नि, तर कहाँबाट किन्ने त?
7: अब किन टाढा जानु, सिर्जना सुनचाँदी पसलमा जाऊ न, त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे।
8: ए हो र, गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त?
7: हुन्छ नि, आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ, अनि विश्वासिलो सेवा पनि।
8: त्यसो भए आजै जाउँला नि।
7: ल, अरूलाई पनि भनौँ है।
8: सुनको चमक, आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
7: सिर्जना सुन चाँदी पसल, तपाईँको रोजाई हाम्रो जिम्मेवारी।
8: सिर्जना सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा, सञ्चालक रूपलाल सुनार, सम्पर्क नम्बर 98095 43893।
0: हिंसा से प्रभावित महिला तथा बाल बालिका के लागि कैलालीमा जिल्ला स्तरीय सुरक्षित आवास सेफ हाउस तत्काल स्थापना गर माग करगिलवा। महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली के विभिन्न दशबुन्दे मागको धरती मंगलबार सामाजिक विकास मन्त्री सन्तोष कुमारी शर्मा थापा ध्यान आकर्षण पत्र बुझे लखुट। महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल सुदूरपश्चिम प्रदेशके संयोजक देवी प्रसाद खनाल व सञ्जाल कैलालीके अध्यक्ष अम्बिका भण्डारी ढुंगाना के संयुक्त नेतृत्वमा गैलक टोली मन्त्रालय पुग मन्त्री थापाना ध्यानाकर्षण पत्र बुझे लखुट। ध्यानाकर्षण पत्रमा कैलाली जिल्लामा विभिन्न स्थानीय तहसे घरेलू हिंसा, लैंगिक हिंसा, यौन हिंसा, बाल विवाह, मानव बेस विखन तथा सामाजिक विभेद से प्रभावित महिला तथा बाल बालिका हुक्र सेवालिह ऐना हुइले सेफे हुगन तत्काल सुरक्षित धर सेकजिना व्यवस्थित गोप्य व मापदण्ड युक्त सुरक्षित आवास के अभाव रहलक उल्लेख करगिलवा। हिंसा से प्रभावित महिला तथा बाल बालिका तत्काल सुरक्षित स्थान में न ढैकन स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, कानूनी सहायता, सुरक्षा तथा पुनस्थापना सम्बन्धी सेवा उपलब्ध कराई सुरक्षित आवास आवश्यक रहलक सञ्जाल के कहाइबा। सञ्जाल कैलालीमा प्रदेश सरकारकै नेतृत्वमा जिल्ला स्तरीय सुरक्षित आवास स्थापना गरेको सञ्चालन गर आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर माग गर्लबा। सँग हिंसाकै कारण घरमा बैठ असुरक्षित हुलक महिला तथा बाल बालिका तत्काल उद्धार गर्क गोपनीय व सुरक्षित वातावरणमा ढना व्यवस्था गरफे आग्रह गर्लबा। वस्तकन सुरक्षित आवासन प्रभावकारी बनाई सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र, ओसीएमसी, कानूनी सहायता प्रदायक संस्था, महिला मानव अधिकार रक्षक, नागरिक समाज तथा सम्बन्धित संघ संस्था बीच प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र निर्माण क्रममा करगिलवा। सुरक्षित आवासमा प्रभावित प्रवेश गरैना, बसाई व्यवस्थापन कना, सेवा प्रदान कना, अन्य निकायमा रिफर कना तथा पुनस्थापना कना विषयमा न स्पष्ट कार्यविधि व मापदण्ड निर्माण करपना माग फेकरगिलवा। सञ्जाल कैलालीके सुरक्षित आवास स्थापना कना विषय न प्राथमिकतामा न धर्क, समय सम्बन्ध, कार्ययोजना, बजेट व जिम्मेवारी निकाय टोक प्रतिक्रिया तत्काल आग बढ़ाई तथा याकर स्थान संरचना, सेवा संचालक मोडालिटी व व्यवस्थापन के विषयमा सरोकारवाला हुकनसे छलफल कर माग करलबा। अस्थायी संरक्षण पाछ भाषा पीड़ित नदीको रूपमा पुनस्थापना गर शिव विकास शिक्षा रोजगार जीविकोपार्जन तथा सामाजिक पुन एकीकरण के कार्यक्रम से द्वारा पनाफे ध्यान आकर्षण करा गिल्बा वस्तक घरेलु हिंसा कसूर ओ सजाई एन 2066 के दफा 12 एक बमोजिम प्रदेश कानून अनुसार सेवा कोष स्थापना कर सुरक्षित आवास संचालन तथा पीड़ित के संरक्षण के लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गर माग करगिल्बा प्रदेश मन संचालन हुना सुरक्षित आवास के नियमित अनुगमन कैक नेपाल सरकार के निर्देशिका तथा मापदण्ड अनुसार संचालन हुईलक आवासन कलहक सेवा प्रवाह के अनुमति दिएपना व सेवा के मूल्यांकन तथा सार्वजनिक जवाबदेहिता सुनिश्चित गर्न माग्फे सञ्जाल आकसर्लबा राष्ट्रिय सभाकी विधान व्यवस्थापन समिति संक्रामक पशुरोग नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्थापन वन कर वनलग विधेयक 2083 संशोधन सहित सर्वसम्मत लेखन पारित कलबा मंगलबार बैठक समिति के बैठक में विधेयक के प्रतिवेदन उपर छलफल हुई पाछ सभापति कृष्ण बहादुर रोकाय परिमार्जन सहित पारित कर प्रस्तुत कलक प्रस्ताव सर्वसम्मत लेकर पारित हुईलक हो विधेयक में संक्रामक पशु रोग के नियंत्रण रोकथाम तथा संभावित संक्रमण से पशु धन हन सुरक्षित धरा आवश्यक कानूनी व्यवस्था समेत गिल्बा विधेयक पारित हुई संग संक्रामक रोग के पहचान पशु रोग के पहचान नियंत्रण तथा रोकथाम के लागि कानूनी आधार थप बलगर होने अपेक्षा करगिल्बा छलफल के क्रम कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्रालय के संक्रामक पशु रोग से प्रभावित किसान तथा पशुपालक क्षतिपूर्ति राहत व पुनस्थापना के लागि कोष की व्यवस्था कर सुझाव दे गिल्बा मंत्रालय के सचिव डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद मिश्र अत्यधिक बाध्यात्मक व्यवस्था ढर्न सिफे कार्यान्वयन कर सिक दिना व व्यावहारिक प्रावधान धरपना बटविले खोज खबर में फेरफे विश्राम विश्राम पा छनीटी सुन्दी रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
9: आंखा का रोगीहरूलाई अत्यन्त जरूरी सूचना नेपाल नेत्रज्योति संघ गेटा आंखा अस्पताल र भजनी नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भजनीमा यही असोज 3 र 4 गते आंखा शिविर सञ्चालन गरी मोतीबिन्दुका बिरामीहरूको शिविरमा नै निशुल्क अपरेशन गरिने र निशुल्क औषधि पनि उपलब्ध गराइने भएकोले आंखाका रोगीहरूले समयमा नै सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध छ। विस्तृत जानकारी का लागि गेटा आँखा अस्पताल सम्पर्क नम्बर 091575204 स्वास्थ्य संयोजक कैलाश डंगोरा थारू सम्पर्क नम्बर 98484-57875।
10: आइ हो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछसे सुरु करल मने घर सिर्जा सिकल
11: अरे का करुरी बुढिया

0: मिलन एल्युमिनियम एन्ड ग्लास हाउस, जमराकी उपार, टिकापुर, कैलाली। प्रोप्राइटर मोहन राज भाट। मोबाइल नम्बर 98 48 51 43 26।
1: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा बच्चादेखि बुढासम्म, टाउकोदेखि घुँडासम्मको उपचार।
2: टिचिङ हस्पिटलबाट एमबी अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फ्यामिली फिजिसियन डाक्टर सरोज खनालबाट बिरामीको जाँच तथा उपचार हुँदैछ।
1: आरोग्य मेडिकलमा पाइने सेवाहरू:
2: दीर्घ रोगीहरू, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थाइराइड, दम, सीओपीडी,
1: नवजात शिशुदेखि वृद्धसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा,
2: बाल बालिकाको स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार,
1: महिलाका समस्या, गायनोलोजिकल समस्या, गर्भावस्थाको जाँच,
2: सामान्य रोग, ज्वरो, खोकी, पेट दुखाई लगायतको उपचार,
1: आकस्मिक रोगको प्रारम्भिक उपचार र व्यवस्थापन,
2: र हाम्रो यहाँ भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
1: सम्पर्क आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुर।
2: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म।
1: सम्पर्क फोन नम्बर 98 68 80 00 08 र 98 25 63 77 72।
3: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। कैलालीमा ट्रकके ठक्करसे एक बालकके मृत्यु हुल बा। सुदूरपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत गौरीगंगा नगरपालिका दुई के झिलमना मंगलबार बिहान 8 बजे उहर से एक क 1352 नम्बरके ट्रक ठक्कर देहबेर उहो ठाउँके 5 वर्षीय लेखराज देवाके ज्यान गेलक प्रहरी से जनागिल बा। ट्रकके ठक्करसे गम्भीर घाइते हुइलक उहाँके धनगढ़ी स्थित माया मेट्रो अस्पतालमा उपचारके क्रममा ज्यान गइलक हो। ट्रकको चालक लम्की चौहान नगरपालिका दुई बैठना सुनिल चौधरी इलाका प्रहरी कार्यालय माला खेती नियन्त्रणमा लिलबा। दुर्घटना बारे थप अनुसन्धान हुइदिरलक प्रहरीसे जनाइगिलबा। धनगढ़ी उपमहानगरपालिका एक स्थित कैलाली खोलामन शौचालयके दिशाजन्य फोहोर पठाइलक भेटागिल्पा छ। दुईजना जरिवाना करगिल्बा। खोलुवामन शौचालयसे निक्रना दिशाजन्य फोहोर फाँक वातावरण प्रदूषण कलक पागिल्पा छ। सम्बन्धित दुईजना जनही 5,000 जरिवाना करगिलक हो। धनगढ़ी उपमहानगरपालिका सार्वजनिक स्थान खोलुवा तथा लडेमा फोहोर मैला व दिशाजन्य पदार्थ फक्ना कार्य नै गर आग्रह गर्दै आइल्बा। खोलुवामन फोहोर फक्ना तथा वातावरण प्रदूषणका कार्य विरूद्ध अनुगमन हन थप प्रभावकारी बनाइना जनागिल्बा। उपमहानगरपालिका नगर क्षेत्रके खोला तथा सार्वजनिक स्थान सफा धर व फोहोरके उचित व्यवस्थापन कर समेत नगरवासी यहाँ आग्रह करलबा। बैतदीके पुरचौडी नगरपालिका 8 लामुनी गाउँमा पहिरोसे एक घर पूर्ण रूपमा क्षति पुगलबा। सोमबार रातको करिब 9 बजे घरके उपरसे खसलक पहिरोसे गैर गाउँके गणेश दत्त जोशीके घर पुरखो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतैदीके प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक भुवन प्रसाद तिमिल सिन्हाके अनुसार पहिरो खसलागल्पा छ। परिवार एक समय घर छोडलक उहरसे मानवीय क्षति हुइनी पाइल हो। घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त हुइल्पा छ। जोशीके परिवार आफन्तके घरमा आश्रय लेकन बैठलबा। यह समाचार के संग खोज खबर ओराइल अंतिम जैती जैती खबर के मुख्य शीर्षक फिर से। रामारोशन विकास केन्द्र आपन प्रथम साधारण सभा के अवसर में असोस 1 गते टीकापुरमा खासे मेला आयोजना करती। भोटेको सी बाढ़ी पाछ सुदूरपश्चिम के 71 जनसंपर्क में अहिले 141 आमहीन संपर्क विहीन। टीकापुर नगरपालिका मन बाल बालिका लक्षित बजेट के समीक्षा ओ हिंसा पीड़ित महिला तथा बाल बालिका के लागि कैलाली में सुरक्षित आवास स्थापना कर माग। लिता अबकला थारू भाषा खोज खबर अत्र 6 बजे नेपाली भाषा मन खोज खबर सुन सकबी। अब खोज खबर से प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद देती। मई गीता फिर विदाई टू सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि। राम राम।
1: टिकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको धारा जनानका लागि आवेदन दिने बारेको सूचना। टिकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था र टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 स्थित रामपुर खानेपानी एक आपसमा मर्ज भई खानेपानी सेवा विस्तारका लागि सम्झौता भइसकेको हुँदा वार्ड नम्बर 3 का उपभोक्ता ज्यूहरूलाई विशेष सहुलियतमा धारा जडान गर्ने योजना रहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। उक्त

0: समयमै आफ्नो घर परिवारको जन्म मृत्यु विवाह र बसाईसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना आफ्नो वाडा कार्यालयमा रहेका पञ्जीका अधिकारी समक्ष दर्ता गरी कानूनी मान्यता प्राप्त गरौ। यसले तपाईँ हामी सबैलाई कानूनी रूपमा काम गर्न वा गराउन सजिलो हुन्छ।
1: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: हिन्दू महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै दुर्गा ज्वेलर्समा एक नम्बर सुनबाट निर्मित माइली तिलरी, छटके तिलरी, रामलीला झुम्का, पिजडा झुम्का, बाला, औठी, पेण्डल, चन्द्रमा र अर्डर गरे अनुसार सुनचाँदीका गरगहनाहरू बिना रसायनका बनाइनुका साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
3: दुर्गा ज्वेलर्स, बलभद्र चोक नमुना इन्टरप्राइजेस नजिकै टिकापुर कैलाली, संचालक देव बहादुर सुनार, सम्पर्क नम्बर 9868 40 16 60।
4: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
5: मैं नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
4: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू, तब तो मैं अब भी जाए।
6: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रप, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा।
7: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

0: सम्पूर्ण संस्कृति प्रेमी महानुभावहरूलाई कार्यक्रममा उपस्थितिको लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछौ। रामारोशन विकास केन्द्र टिकापुर कैलाली।
1: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव धल डाक्टर हेमन्त स्वाल से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराईटी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरमे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली। फोन नंबर 0915600595 ओ मोबाइल नंबर 9848423।

0: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका टेक 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै रडगैया झोला उद्योगमा विभिन्न डिजाइनका झोला सुगठ मूल्यमा पाइन्छन्। जस्तै स्कूल ब्याग, क्यारिङ ब्याग, लगेज ब्याग, फाइल ब्याग लगायतका विभिन्न डिजाइनका ब्याग अर्डर गरे अनुसार बनाइन्छ र पुरानो बिग्रेको झोला मरमत गरिन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
1: रडगैया झोला उद्योग, मुनुवा रोड, टिकापुर, कैलाली। संचालक रामप्रसाद चौधरी।
2: कार्यक्रम छोट मिठ साता के बुधवार दिन के एक बजे से अपने उगन थारू भाषा के कोई गीत मन परत।
3: जब देखनो तो हिन है।
2: यदि मन परत कल से अपन मन सुनना चाहती कल से हमन फोन करी और कही महीन ई गीत मन परत। गीत के बोल बताई, गीत मन परना के दुई ठो कारण, वो गीत कौन एल्बम के हो या फिल्म के नाम बताई और अंतिम में एक जन के नाम अनिवार्य ले दी। कल से हमारे गीत अपने पक्के से सुना तो उठाई मोबाइल और डायल कर भी 0915 61 255 साता के बुधवार दिन के एक बजे जरूर डायल करे हुई। कार्यक्रम छोट मीट में केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में सुने ना बिस्तरी। मई कार्यक्रम संचालक रमेश मिशन के साथ में।

0: दाई बेड्ड भूख लाग्छ, खाजा बाँकी नै। ए काकी फे आइल बाटी, राम राम काकी।
1: राम राम हो नानी, मजा बाटो ऐसन ले छाइट भारे हो स्याकल बाजे। आप भलि भुवास कर दिए परल है, समय में भुवास कर दे से आपन जिम्मेवारी फे ओरिना और जनक बात फे सुननी पर्ना।
2: आ दीदी फे वो बेला आपन कटरा पहना इच्छा रह, छुट्टी में भुआस कर देख मुआ दाई बाबा कर लग गलती जस्त फिर डोरे नीच हटू दीदी। मई चाहे बाल विवाह कर नीच हटू, ये बाल विवाह निकरण दीदी।
3: शारीरिक व मानसिक रूप में सक्षम नहीं होकर किशोरावस्था में जो छाइक भुआस कह देना से दाई वो बच्चा दोनों के स्वास्थ्य खतरा में पड़ सकत, उ हिंसा के शिकार बन सकत, वही विद्यालय छोड़ पड़ना बाध्यता हुई सकती, उ रोजगार फिर नहीं पाए, वो गरीबी में बाँच बाध्य हुई पड़थिन। नेपाल के कानून अनुसार 20 वर्ष नहीं पुगे भुआस कराई नहीं हुई, असिन करैल से 3 वर्ष सम कैद वो 30,000 रूपया सम जरिमाना हुई सकत, वो असिन भुआस कानूनी मान्यता नहीं पाए।
1: टीकापुर नगर पालिका वडा नंबर 3 से देगिलक जनहित में जारी संदेश।
4: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 मेगाहर्ट्ज।

बाबु आमा छोरो छोरो छोरो सेरो फेरो एक्लै आउनु एक्लै जानु तेरो न मेरो हुर्कायो बढायो आर्जन खान लाए ए होइन रहेछ बुढे।

परीक्षित श्री सारा संपूर्ण प्रकार को प्रक्रिया में पूर्ण भर माता श्री इस प्रभाव बाट अब म कसो करूं भगवान लौन दया को सागर भनेर विनती करने वाला छोरो राजकुमार जंगल जानु भो जंगल में पालन भई सके अहिले परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर श्रीहरि इस प्रभाव बाट इच्छा पूर्ण करना को लगे शाश्वत ब्रह्म ज्ञान को उपदेश को निमित्त अहिले तैयारी भर अब कहाँ जाऊं के करूं कसो करूं बड़ा अप्ठारो पर्यो त्यो अप्ठारो लाई भगवान परमात्मा उत्तरापाद राजा का छोरा ध्रुव नाम गिरी को राजकुमार अहिले जब जब नारद नाम गिरी का ऋषि को पार्श्व जंगल में पुगे आपने स्वागत नीतिगत कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए भन्ने सबन को कथा है सद्याबाट महाराज परीक्षित सुखदेव स्वामी ने उत्तरापाद राजा का छोरा ध्रुव सौतानी आमा का कोप रूपी वचन को बाण बाट तीर्थ करना का लागि जंगल जानु भो बीच बाटो में गई सके रात्रि का समय में आमा बिउजनु रुनु उत्तनपाद राजा का छोरा ध्रुवलाई नारदले सम्झाउनु राजन जान हुँदैन तिमी सानो छौ बाबा कहाँ जान्छौ भनेर सत्ताखेरीमा म उत्तनपाद राजा को छोरो ध्रुव मेरो सौतानी आमाले मेरो बाबा को काख में बस्दा आज गलत्यार हुराइदिनु भो अहिले जब बाबु को काख त पाइन भनेदेखि राज्य कसरी पाम्ला मलाई सारी चोट पर्यो सारी मर्म पर्यो मरम मरममा घाउ पर्यो यसै कारणले म जंगल जान्छु गुरु आज्ञा पाम तमाम देव आज्ञा दी बख्नु पर्यो मेरा गुरु भनेर भन्दा मेरो राजा तिमी सानो युवा बच्चालाई कसरी आज्ञा दिऊ जंगलमा बाघ बालु हात्ती गेडाको भय मरि मसानको भय प्रेतात्माहरूको भय जान हुँदैन भन्नुभयो यसो होइन गुरु म जब मर्न तयारी हुन्छु तर फर्कन चाहन्न विधान सिकाइदिनुहोस् भन्दा लो मेरो बाबा तिमी अहिले सरासर जाऊ यमुनाजीको उत्तरपट्टि एउटा मधु नाम गरेको वन छ त्यो मधु नाम गरेको जंगलमा गएर भगवान नारायण वासुदेव प्रभु को ओम नमो भगवती वासुदेवाय भन्ने यो मंत्र पढ़ थोड़े दिन में भगवान प्रसन्न भई बक्सने तिम्रो चित्त भगवान में लाओस् यही प्रकार को तिमला शुभ संदेश का साथ आज जाऊ तो भनेर भगवान प्रभु ने पठाई दिनु भो रे उत्तरपाद राजा का छोरा ध्रुव नाम गरेको राजकुमार अहिले मधुवन में गए भगवान नारायण वासुदेव को पर ब्रह्म चित्त लगाई ध्यान करना लगे।

महाराज परीक्षित में सुखदेव स्वामी ले आज्ञा कर लौतरी सी प्रणाली बने राजा परीक्षित का प्रतिमा सुखदेव स्वामी ले आज्ञा करी बक्स्यो पछाड़ी बाट उत्तन पादराजा का छोरा ध्रुव नाम को राजकुमार ने पहिलो महीना में एक महीना में के गर्नु भो तीन दिन बिराएर फल फूल खाएर तपस्या करने। दोसरो महीना में छ दिन बिराइकन हरियो सागपात खाएर तपस्या करने। तेसरो महीना में नौ दिन बिराइकन सुकेको पत्ता खाएर तपस्या करने। चारों महीना में बारह दिन बिराइकन जब वायु भोजन कर तपस्या करने। पांचों महीना में श्री ब्रह्मांड सारा संपूर्ण कर जब जब भोजन करना का लाइ ते वायु भोजन कर तपस्या करने। अनि त्यसपछि पछाड़ी महाराज परीक्षित अब तपाई के सुन्न चाहनुहुन्छ भनेर राजा परीक्षित लाई सुखदेव स्वामी ने बड़ो प्रेम का पूर्वक आज्ञा करी बक्सो। त्यसै अवस्था का बीच में सौनक आदृशी प्रणाली भनेर महाराज परीक्षित लाई सुखदेव आज्ञा करी बक्सन्छ। अब त्यहाँ देख्नु उपरांत तपाई के सुन्न चाहनुहुन्छ भनेर राजा परीक्षित को हजुरमा सुखदेव स्वामी ने आज्ञा गर्दा उत्तनपाद राजा का छोरा ध्रुव नाम भएको राजा को समाधि जब खुलेन भगवान ने आएर उभिनु भो। पांच दिन संकली प्रभु ले गए गाला में छोई नुभ थे बल्ल ध्रुव को समाधि खुल्यो। युवंत प्रवेश मम बाच मीमा प्रसुतम संजी बैत खिल शक्ति धर यशो धाम नाम अन्यत्र हस्त चरण श्रवण त्वगादिन प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुम्यम। भगवान हजुर को पाऊ को सेवा कर पाऊ मैं तो हजूला नचिने को सामान्य मैं कोई सोचते नसोचे आज मेरो समाधि खुल्यो प्रभु को दर्शन पाई धन्य जन्म सफल भनिकन तब ध्रुव नाम को राजकुमार परमात्मा का चरण में परेर ध्रुवलाई भन्नुभयो भगवान ने जे माग्छौ त्यही दिन्छु के मागौं प्रभु मेरा पिताजी ने आर्य को पुष्करावर्त को राज्य पाऊ भन्नुभयो। ए बाबा पुष्करावर्त को राज्य तो अघि नै पाउनु पर्ने नीति में हो अप्ठारो कुरो नै होइन। बाबा को कान्छो छोरो भइसकेपछि मने जेठो छोरो भइसकेपछि पाइहाल्यो नि भन्नुभयो। अब भगवान के करो भनेर सोधा तिमीले जानेनौ सानो मेरे को ना को कारण राज्य संचालन कर राज्य संचालन पछि परिपूर्ण गरिसकेपछि 36,000 वर्षसम्म पृथ्वी में राज्य गरेर कालकात्रीमा पाउरा कि तिमी ध्रुव लोक जाऊ है भन्नुभयो। जय होस् नारायण यही हो मेरे काम भनेर अहिले भगवान अन्तर्ध्यान उत्तनपाद राजा का छोरा ध्रुव आफ्नो समाधि युक्त आफ्नो दरबार सवारी सारा जनहरूले फूल गुच्छा माला सारा बाट नमरंग का चंदुआ सम्मान गारत ने स्वागत करें घर भित्र।